संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन

जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जीव परया। सैल पत्थर मह जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडा वै सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौं तुद बिन अवर न जाना।

जो से वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्या वह हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी।

पहजान है सोय, जन नानक गुरमुख परगट होय। आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहा ना हों जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहोरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तिरे कित न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप संयम धर्म न कमाया।

एक ओंकार श्री वाहि गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिये सब बैरन कौ आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करे हो रच्छा राख लिहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुँह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्वकार निर्लंब वाद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकरी कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रच्छा हुए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरे हो ताके ताव तनक में हरे हो रिद सिद कर मुँह सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट

मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेत कहे हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तो हे बकानियो दोहरा।

का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कुए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे चढ़ जाहे पाउ जल बिकम सगाहो गुरु शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सहनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नित्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ऐ ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले की के महला पंजवा।

सत्संगति बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी बोधि पाची दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कारण उन्हें दयावताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ताई हुए सहाय। दसा पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु। गिरी ब्रवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुख से हटिया चपिया तपिया जिन्हें नाम चपिया वंड चकिया देग चलाई तेग वाहि देख निट किया तेना प्यारे सत्यारे की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ये सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुवाइया चरखड़िया से चढ़े आरे नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु। पंजा तख्त आसपास गुरुद्वार का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता आवे चित आमण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तहन चरियात देखते की फतेह बृद की पैच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु। सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब आज पंथ सदा साहब दतार दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब थोर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ न छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दार तुम असमाल दादा अपने खालसा जी बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु तन तन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताले रास। ये गरीब नवाज जी आप जी चरण कामना अरदास ने आपने बख्शिश की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखुन साहब के संपूर्ण पाठ उतार इस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधदार रह रास साहब पाठ किए कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत देवत की कृपालता करो जी। अगो तो शोध पितर बाणी टाने बल बुद्धि बख्शिश करो बाद इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता पुत्र कड़ाप शादी देगा तैयार करे हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साहब संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव दे रखा बख्शिश करो जी। इमराज आप दिया बख्शिया दाता जो नगर चुट सवारियां प्रवान करनी दतार आपके चरण सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो अते सदा ही इस तरह अपने चरना सेवा जी भान बखनी कृपालता करो गरीब नवाज कृपा करो जी। ये दतार जीओ कृपा करो अमृत वे तो लैके दरते आई साफ संगत की हाजरी दर प्रवान करो कड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से तिरफुल बेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब नवाज बेअंत प्रवाला वालों बेअंत माया बेअंत रस्ता आपके नगर देखा सुने मंदिर साधन प्रवान करो सब दमाइया सफल करो कार्यवाद साफ संगत दुभकामना संबंध पूरी करो जी। गिरवाज कृपा करो खास संबंध सिख कौम एकता अथवाग प्यार की बख्शिश करके सच दाज बख्शो चाना जोड़ो कुरबानी का प्यार बख्शो गिरवाज कृपा करके हर मैदान दीवान फतेह बख्शिशता करो जी। गुरु गिर महाराज दूर दराज कराने बैठी लाइव तकी शर्म कर रही सारी संगतन शाज प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सतारा में कृपा की संगत उद्यम बख्शे ने संगत आदि चरण धनबाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा कर चरण प्रवान करो बच्चा सब कमाइया सफल करो कार्यवाद सब संगत शुभकामना पूरी करो जी। मेरा घर आओ सेवा प्रवान करो पुनः रखबाई बख्शो पितृ नाम बख्शे ग्रंथ अज के शाम के कथक यमता वास्ते आगा बख्शो रेंदे कार सवार की चरण धनवाद बनाओ शोधे पुत्र सरान की कृपा दतार सही बिहार मेरे दिल मेरा आपका नाम जता नानक नाम करा तेरे पाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्ञा भैया काल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पात साह वेख तुर कर मचा जम दूती है हीरिया

रब दे गुरु दे पिछे लग जान, गुरु दा पल्ला ना छड़न। क्यों? सतगुरु खोट्यों खरे करे शब्द सवारन हार, क्योंकि गुरु नू रब ने उस समर्था दिती है। गुरु टकसाल है, खोटा सिक्का नहीं किते भी चलदा। खोटा सिक्का जदों खरा हो जांदा है टकसाल विच्चों दी आके, उदे विच चांदी पै जांदी है, उदे विच जेड़ा है धात शुद्ध पै जांदी है, वो फिर हर थां ते चलदा है। इसे तरह जीवन खोटा रब दे घर विच परवाह नहीं। खोटे नूं खरे करन वास्ते तां कलयुग विच सतगुरु जी ने अवतार धारण किया, कलयुग विच बाणी अवतरण हुई कि यह खोटा मन खोटी बुद्धि जिहड़ी है यह खरी हो जाए। विवेक बुद्ध असी रोज मंगदे हां, सिखा नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान। विवेक दा अर्थ है खरी बुद्ध मिल जाए, पर संसार विच बड़ा औखा है। बाबा कबीर जी का बचन है, कहिंदे इह मत बड़ी भैड़ी है, जिहड़ी मनमुख की मत है ना, जिहड़ी संसारी मनुख की मत है बड़ी भैड़ी है। यह मनुख नूं अपने पिछे ला लैंदी है, इह ओह कर्म करांदी है जिहड़े नहीं भी करने चाहीदे जिन्ना चिर विवेक नहीं। उन्होंने कहा आश्चर्यता वेखो, मत ने मन दे पिछे लगना नहीं सी, मन नूं अपने पिछे लाना सी। बाणी दा बचन है, बाबा कबीर जी दा शब्द याद आ गया। उन्हां क्या मन है लेला, भेड़ दा जिवें लेला हुंदा है, ते बुद्धि है भेड़, मां है ना मन दी मन्नी गई। हुण जिहड़ी भेड़ है उहदा बच्चा लेला उहदा दुध चुंगदा है ना, पर कहिंदे कहो कबीर अचरज भई खेड, लेले को चुंगा नित भेड़। कहिंदे इत्थे ते सारा कुछ पुट्ठा होया पिया, मन ने बुद्धि दे पिछे लगना सी, बुद्धि विवेक ने जो निर्णा कीता उहदे अनुसार मन तुरदा, पर इत्थे बुद्धि एडी अपने आप विच अविवेक हो गई, भ्रिष्ट हो गई। वह कोई विचार दी, कोई भी किसी विचार दे उत्ते निरीक्षण ही नहीं करती, जिवें मन कही जांदा उहदे पिछे लगी जांदी, हां हां तेरा कीता सब कुछ प्रवान है। वह बुरा सोचे, माड़ा सोचे, चंगा सोचे, बुद्धि सीधी उहदे पिछे लग जांदी, उहदे अनुसार ही हो जांदी है। यह है अविवेकता, मलीन हो गया ना साडे अंदर दा दीवा, मलीन हो गया। बाबा रविदास जी ने कहा ना कि हे वाहिगुरु, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਵਿਵੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ खड़े नहीं हो सकते, जिन्ना चिर तुर नहीं सकते। अरदासां बेनतियां, फिर गुरु की कृपा दे नाल गुरु शब्द दा सहारा मिलता है कि मनुख दौड़ना प्रारंभ कर देंदा है, फिर उन्हूं भय नहीं रहिंदा भी हुण कोई डिगेगा मैनू, हुण मैं डिग जांगा, क्योंकि सहारा ही गुरु शब्द दा हो गया, गुरु नाम दा हो गया। इस करके पुकार जिन्हां ने यतन करना है उन्हां लई औखा हुंदा है। दो तरह के लोग बड़े सौखे हुंदे ने, बाबा कबीर जी ने कहा दो तरह के लोग बड़े सौखे ने। एक तो वक्ती सौखे ने, जिन्हां ने कुछ जानना नहीं, जेडे बिल्कुल इउं कह लिए भी जिन्हां ने बिल्कुल अपनी मत नूं वरतना नहीं ना, वह भी बड़े आनंद च ने, खा पी लिया, सौ लिया, हस खेड लिया, की लैना है असी अगे तो, की लैना असी कर्मां तो, की लैना असी नेकियां करन तो, उन्हां नूं कोई मतलब नहीं, जिवें मन ने कहा राजी ने उस, वह भी बड़े खुश ने। एक ने जिन्हां ने जान लिया, मान लिया, विवेकता आ गई, वह भी बड़े प्रसन्न ने। पर विचले जेड़े ने ना, ना तो जेड़े मूर्ख बन सकते ने, ते अजे सियाणियां वाली समझ नहीं आई, वह विचली अवस्था जेड़ी है मनुख नूं बड़ा दुखी करती है, बड़ा अतुर करती है, भी किवें कीता जाए। बुरे पासे जा नहीं सकते, खाई विच डिग नहीं सकते, खाई का पता लग गया, तो पहाड़ी ते चढ़िया नहीं जाता, अजे शरीर पिंगला है, ताकत नहीं शरीर विच, फिर वह सहारा उही लभेगा ना, जिन्हों आसरे की लोड़ है उही लभेगा, जिन्हों आसरे की लोड़ नहीं, जिहड़ा तुरना ही ना चाहता। मान लो किसी कोल पैर ना होण, तुसी उहनू विसाखियां दे दिओ, डंडे दे दिओ, कोई सहारा दिओ, वह वगा के मारेगा मैनू लोड़, मैं तुरना ही नहीं चाहता, मैं नहीं तुरना चाहता। ज्यादातर धर्म विच ऐसा हो रहा है, संसार विच ऐसा हो रहा है, असी धक्के नाल लोकां नू विसाखियां फड़ाने, धक्के नाल लोकां नू सहारे, आ डंडा पकड़ लो, तुर पवो तुर पवो, पर वगा के मारदा बंदा धर्म दा डंडा, धर्म दा ज्ञान, कहिंदा नहीं मैं नहीं तुरना, मैं जिथे हाँ उत्थे ठीक हाँ,
मैं अगे नहीं तुरना। ये संसार विच गिनती लोगों की ज्यादा है पर नहीं पता अंत

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप हो जैसे जल में कमल अलेप हो। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख हो जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मान होए प्रकाश हो जैसे तर ऊपर आकाश हो। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रासो। ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी लेता नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी क्या की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी इसकी शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक। उर तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पेख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत। करण न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बाशना मन ते टरै। इंद्री जित मंच दोख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिस्न की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत होवे नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग रचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल दया गय दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मालक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोदै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मै जानै असथूल। चहुवरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो। साध संग अग्न सागर तरह, हर धन के भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एहो रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, काल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसह सोहो तिने धान, सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकि गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र बेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी।

0: अमोल भंडार
1: अमोल आवे है अमोल ले जा है अमोल भाए अमोला समा है
0: अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल दौर अमोल परवान।

0: सेवक
1: सेवक सिख हमारे तारियन
2: चौन चौन सतर हमारे मारिय
1: हाथ दे मुझे अबरिय
2: मरण काल का त्रास निवरिय
1: जो सदा हमारे पश्चा
2: सरिया तो जो करियो रक्षा
1: रख लो मोहे रखन हारे।

धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी आप जी ने अपार कृपा रहमत कीती अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर

कुदरत सुना है, कुदरत पाओ सुखसार, कुदरत पातालियां काशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिन सिरंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बतियां, कुदरत मान अभमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती।

हमें आजात है, हमें कर्म कमाए, हमें ही बंधना फिर जोनी पाए। हमें कितो उपजाए कित संजमे जाए, हमें हुक्मै पै कृपराए, हमें दीर्घ रोग है दारू पी इसमाए। कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो, संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतो कही।

0: जति सदा वह जुक्त न जाने छट बह कर बार सबको पूरा पे हो वह घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जप महला पहला
1: वदिसु जी नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जीवन में जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर क्रम जना कुतंत माया।

चली चंद्रावल कौन कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद थर्मण हुआ नाम खुदाया लव पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरक पठानिया वल

रंग हसे रंग रोवे चुप पे कर जाए परवा जाए किसे केरी बाज सचे लाए दरबाटे ऊपर खर्च मंगा जबे

हर जुग जुग भगत उपाया, पैदे रखता आया राम राजी। हर नाख सदुष्ट हर मारिया प्रहलाद, अहंकार अनिंद का पिट दी नाम देव मुख लाया।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। जिन्ने मर्जी पदार्थ कट्ठे कर लो, जिन्ना मर्जी धन माया कट्ठी कर लो, पर महाराज कह रहे ने नाम तो बगैर, बाणी तो बगैर अंदरला सुख नहीं बना। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। किसे जुड़ी हुई रबीरू नू परिवार ने पूछा भी माला लेके बैना साढ़े को समा नहीं, गृहस्थी चौकड़ा मार के दो दो घंटे कारोबार भी करने। वो मस्ताना जो कि कहता है तुहानू किने आख्या माला लेके बैठो, भांड्या नू सिमरना बना, झाड़ू नू सिमरना बना, कपड़े प्रेस कर दे उन्हू ही सिमरना बना। नामे कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन। गलते मन दी है ना, माला केवल याद कराने वास्ते है। कारोबार नू ही माला बना लो, गड्डी दे स्टेयरिंग नू ही माला बना लो, खेड़ वर्त जाएगी। कहंदे ना कई कह दें दे मन नहीं लगता किवें छड़िए, ये आदतां किवें छड़िए। कहंदे ना छड्डो, छड्डण दी बजाय नाम नू फड़ो, घुट के फड़ लो, बाकी आपे दूर चले जाए। गुरु अर्जन देव जी।

परम सम्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ऐतवार दे हफ्तावारी दीवाना दी हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा गुरु बख्शिश दा सदका गुरु चरणा दी हाजरी भर के सतगुरु दी खुशी प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने गुरु चरणा विच बैठ के सरवण कीता। कुछ सियासी बुलारियां दे विचार भी आप जी ने सरवण कीते। आओ समा होया अमृत बाणी दी कथा दा गुरमत दी विचार आप जी नाल सांझ कर सकां। कथा दी प्रारंभता तो पहला मन बिरतियां एकागर करके फतेह दी सांझ करो। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने आप जी दे नाल मंगल रूप विच पंचम पातशाह जी दा सोरठ राग दा पावन शब्द पढ़िया है। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। ये पंचम पातशाह जी का पावन शब्द है। इस शब्द की विचार जो आप जी देखोगे, सतगुरु दतार पिता महाराज जी एक पासे अपने आप नूं औगुणा दा भरिया दस रहे ने, ते वाहिगुरु परमेश्वर नूं गुणा दा भरिया दस रहे ने। गुरु की बाणी दे अंदर परमात्मा दी सिफत दा एक ए बहुत वड्डा तरीका सतगुरु जी ने समझाया। तकरीबन सारी बाणी दे अंदर जदों भी करते दी सिफत सतगुरां ने कीती है जा करन दी जाच दसी है, कीर्ति दा ए बहुत उत्तम ढंग है सतगुरां दी अमृत बाणी विच कि जिन्ना चिर मनुख अपने औगुणा नूं नहीं जानदा, अपने गुनाहां नूं नहीं जानदा, अपनियां कमियां नूं नहीं जानदा, उन्ना चिर उन्नूं किसे होर दे गुण दिस नहीं सकदे। ए बहुत वड्डा जीवन दा एक रहस कह लई एक भेद है कि जिन्ना चिर मनुख अपने आप अंदर झाती नहीं ना मारदा, अपना आपा नहीं देखदा इमानदारी दे नाल कि मेरे अंदर की कुछ है। ये प्रेम दा भावना दा मोहब्बत दा एक तरीका है। जिसने वाहिगुरु नाल प्रेम करना है ना, परमेश्वर नाल मोहब्बत करनी है, मोहब्बत करन वाला अपने महबूब दी सदा सिफत करदा है ते अपने आप नूं सदा औगणहार ही दसदा है, अपने आप नूं गुनाहगार ही दसदा है। यही कहिंदा है भी तू मेरे ते तरस कीता कि मैनू अपने आगोश विच लै लिया, अपनी गलवकड़ी विच लै लिया, हे मेरे महबूब मैं इन्ने जोगा है नहीं सां कि मैं तेरी प्रेम दा तेरी कृपा दा पात्र बनदा। यह सच्चे प्रेम दी निशानी है। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने दतार पिता जी ने जदों भी रब जी दे नाल प्रेम करन दी गल कीती जां सिखाई है ते यही आख्या भाई उहदे नाल प्रेम करना है ते उहदियां सिफतां करनी है ते उदियां सिफतां करदे आ इह गल जरूर आखनी है कि परमात्मा मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं, कोई ऐसी मेरे कोल शक्ति नहीं, कला नहीं, प्राप्ति नहीं कि मैं तेनू प्राप्त कर सकां, भी मैं तेनू हासिल करन दा हक रखदा। यह मेरे कोल कोई शक्ति नहीं, मैं जे तेनू हासिल कर सकदा ते ओ तेरी कृपा नाल तेरी बख्शिश नाल, वरना मैं तां बिल्कुल निमाणा, मेरे पल्ले कुछ नहीं। मैं तां किया हम मैले तुम ऊजल करते। हुण मैले नूं मैला ते कोई कपड़ा भी धारण नहीं करदा, मैला ते कोई वस्तु पदार्थ भी नेड़े नहीं आउण देंदा, पर गुरदेव जी कहिंदे मेरा ये जीवन समुचा बंदे दा
वस्त्र तो समझ लगता है भी मैला मिट्टी कट्टे दाग नाल हो जाता है। हम मैले का मतलब की है, असी किवें मैले होने हैं? हम मैले तो जो बचन आया तो मतलब यह नहीं भी शरीर से मिट्टी लग गई तो असी कही भी मैं मैला हो गया। असी कह दें ना कि मैं मैला हो गया, मैं गंदा हो गया। नहीं, मैं इस संसार दे मिट्टी कट्टे नाल गंदा नहीं हुंदा, वो साडा शरीर हुंदा है। तन जदों भी मैला होएगा पानी नाल धुप जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पर जेड़ी मैं मैली है ना, वो मैं जेड़ी मैली हुंदी है साडे कर्मां दे संस्कार नाल, साडी बिरती नाल, साडी नीयत नाल, साडी भावना दे नाल। वो भावना हुंदी कर्मां तो ही है, कर्म विच्चों ही भावना पैदा हुंदी है। सो गुरु साहब जी इत्थे जदों हम मैले दी गल करदे ने, इहदा भाव इह है कि इस मन दी गल कीती, वाहिगुरु मेरा मन किन्ना मैला है, कदों दा मैला है। असी बाणी विच पढ़दे हां, जन्म जन्म की इस मन कौ मल लागी, काला हुआ स्याह। गुरु साहब कहिंदे इन्ना काला हो गया, शाह काला हो गया, इनू धोण दा यतन करिए। बड़ी सोहणी उदाहरण गुरु साहब ने दित्ती है, पुराने समया मंदर जेडे लोग तेल कढ़न दा काम करदे सन ना, सरों दे विच्चों तिलां दे विच्चों तेली उहनू कहा जांदा सी, उहदे कोल जेड़ा कोल्हू हुंदा सी ना, उस कोल्हू दे विच जदों अनाज तेल वाला तिल पाए जांदे सन ते उहदे विच्चों तिल दे विच्चों तेल निकलदा सी, ते फिर दुबारा शाम नू उस कार्ज नू करन वाला वीर उसनू एक बर्त कह लिए भी एक लीर नाल, एक कपड़े नाल, एक वस्त्र नाल अपना कोल्हू साफ करदा सी, ते उह काला हो जांदा सी कपड़ा, उह बिल्कुल थिंदा हो जांदा सी, इन्ना काला ते थिंदा, उहनू भावें जिन्नी मरी वर्जी धो लवो उहदी कालख नहीं सी जांदी, उहनू धोता भी जांदा सी, सुकाया भी जांदा सी, पर उह काला ही रहिंदा सी। गुरु साहिब जी ने उस तेली दे उस कपड़े दे नाल मन नू तशबीह दित्ती है कि मन इन्ना काला है, इह भावें 100 तीर्थां ते जाके इशनान कर ले, रटन कर ले, जप तप कर ले, कुछ भी कर ले, पर इह जिहड़ी मन दी अवस्था है इह तेली दे कपड़े दी तरह है, खनली जेड़ी है ये धोती उज्जल हुंदी नहीं भावे 100 वरी तो। इथों तक भी बचन गुरु साहब ने किते ने। एक कह दा भांडा हुंदा है, अजकल ते बर्तन मिलते नहीं, अजकल तां धातां खत्म हो गई, कह दी पित्तल दी कांसे दी कहिंदे सां। कह दा भांडा बड़ा भारी हुंदा, मजबूत हुंदा है, उस कह दे भांडे नूं बड़ा जदों कोई धोंदा ते लिशकदा, पर उहदे विच इक औगण हुंदा भी उहनूं भावे 100 वरी धोण तो बाद भी उन्हू साफ करके कपड़ा मारीे ना कि उन्हू अंदरों सुका लीए, जिन्नी वरी भी उहदे अंदर कपड़ा मारी दा सी, कह दे भांडे दे विच जन्म जन्म की कालख हुंदी है, उहदी कालख नहीं जांदी। गुरु साहिब ने भी कहा भी मन जेड़ा ना कह दे भांडे वर्गा, 100 वरी धोण तो बाद भी इह काले दा काला रहिंदा। इह गुरु साहिब जी का बचन है, धन गुरु नानक देव जी का, उज्जल कहां चिलकना घोटम कालड़ी मस, धोत्या जूठ ना उतरै जे 100 धोवां तिस। कहिंदे धोत्या जूठ उत्तर जी नहीं, जे 100 दा अर्थ ते नाल नहीं, 100 दा अर्थ गिनती दा भी 100 वरी भी धो लईए उह लथदा नहीं। हे वाहिगुरु मैं इह कहां भी जिद्दन मैं निर्मल होवांगा उदन तूं मैनूं स्वीकार करेगा, जिद्दन मैं पवित्र होवांगा उदन तूं स्वीकार करेगा, तेरे नाल लगन तो बिना मैनू पवित्रता मिल ही नहीं सकती। पवित्र ही उदन होना मैं जिदन तेरा मिलाप होएगा, उदू पहला भावे मैं कितनिया भी तैयारियां कर लवां। सुहाग दी गल गुरु साहब जी ने बाणी विच बड़ी कीती है, सुहाग वंती दी भी गल कीती है, शिंगार सारे सुहागण दी तैयारी ने, पर सुहाग वंती उदन ही होना जिदन कंत दा प्यार मिलना। गुरु साहब कहिंदे धर्म दे सारे कर्म वाहिगुरु दे घर प्रवान होण दी तैयारी ने, पर प्रवान उदन ही होना है जिदन वाहिगुरु दी दृष्टि ने साडे ते किरपा करनी है, ते उहदे लई इही कहना भी मैं जिवें दा हां वाहिगुरु मैं इह कहां भी जिदन मैं पवित्र हो जांगा उदन तेरे कोल आवांगा, इह दिन कदी नहीं आउणा, तू जिवें दा मैं हां उवें दा कबूल कर लै। हम मैले तुम उजल करते, तू उजल करन वाला, मेरी हालत तां मैली है, किड्डी कु किन्ना कु मैला। बाबा जी दा इक बचन आउंदा पंचम पातशाह जी दा, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई,
माटी का क्या धुप है स्वामी, मानस की गत यही गत दा अर्थ है हालत। साडी हालत तां यही है कि असी कदी निर्मल ही नहीं हो सकते। दो तरह की गल है वेखो, एक शैतानी बिरती ये गल कहे भी जिन्हें माड़े कर्म करने ना, जिहड़ी शैतान बिरती है ना वह नेक विचारां नूं लैके भी अपने मतलब दे अर्थ कर दी है कि जिवें दे चंगे विचार बुरे बंदे भी अपने वरत लेंदे ने अपने लिए, क्योंकि विचार सब दा हुंदा है, उहनूं जिवें दा मर्जी उहदा अर्थ मोड़ लो, उहदे भाव बना लो। इहदे अर्थ बुरे बंदे भी कर सकदे ने कि वेखो जी बाणी विच धार्मिक लोकां ने कहा भी असीं कदी निर्मल हो ही नहीं सकदे ते फिर असीं माड़े कर्म करी जांदे आं। नहीं, इत्थे उह भाव नहीं भी जिहड़े माड़े कर्म करदे ने ते उही आखदे ने भी असीं माड़े आं। इत्थे उन्हां दी गल है कि जिहड़े सचमुच निर्मल हो रहे ने, निर्मलताई दे मार्ग ते तुरे ने, पर उन्हां नूं पता है भी रब दे घर दे अंदर प्रवानगी साडी निर्मलताई नाल नहीं होनी, उहदी किरपा नाल होनी है। वह हर पक्षों निर्मल हुंदे ने पर फिर भी आखदे ने हे वाहिगुरु तेरे दर ते प्रवान होण दे लई साडे कर्म कोई मायने नहीं रखते, तेरी किरपा ही मायने रखती। इह उन्हां दी गल है, हम मैले तुम उजल करते। दतार जी कहिंदे किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या धुप है स्वामी, मानस की गत यही साडी ते हालत यही है, असी सदा ही एवें दा रहना है। ते जे तू कहे भी पहला पवित्र होके आ, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे जे परमात्मा कहे पहला पवित्र होके आ फिर ते रब नूं मिल ही नहीं सकते, रब की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साड़ी हालत की है। बाबा रविदास जी कहते हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे। इत्थे पतियार दा अर्थ हुंदा है कि तू मेरी प्रीख्या करन लगे, तू कहे भी पहला प्रीख्या विच पास हो, रब प्रीख्या पावे ते बंदा अपनी मर्जी नाल पास हो सकता है। गुरुदेव जी कहते नहीं बाबा जी, मेरे ते तू प्रीख्या पावे ते तू कहे मैं पास हो जावा फिर तेनू मिला, कहिंदे मैं पहला ही स्वीकार करदा मैं ते बिल्कुल दीन हां, गरीब हां, मैं बिल्कुल निमाणा हां, मैं तेरी कसवटी ते पूरा नहीं उतर सकता, बस मेरे कोल तां एक ही काम है, मैं तेरे चरणा विच आके डिग गया वा, जिवें दा हां तू मैनू अपने चरणा विच थां बख्श दे, जैसा भी मैं हां। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊं रमैया कारणे। वाहिगुरु मैं तेरे तो वार ने बलिहार ने जाना, की हो गया मैं माड़ा हां, की हो गया मेरे कर्म ऐसे ने, पर मैं तेरे तो वार ने जाना क्योंकि मैनू अपने कर्मां ते उन्ना भरोसा नहीं, तेरी कृपा ते ज्यादा भरोसा है। भाई साहब भाई गुरदास जी पंचम पातशाह जी दे अनन सिख, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तो सिखी लई, गुरु तीसरे गुरदेव जी तो भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास जी तीसरे गुरदेव जी के नाते विच भतीजे लगते सन, पंचम पातशाह जी के मामा जी लगते सन, बड़े विद्वान सन। उन्हां दे इक बचन है बड़ा कमाल दा, वो कहिंदे परमात्मा जे मैं ये आखा कि मैं पापी बन के पवित्र बन के तेरे कोल आवांगा, जां जिहड़े पवित्र हुंदे ने तू उन्हां नूं थां दिंदा, ते मैं जो अपने वल वेखदा हां मेरे कोल तां कोई गुण ही नहीं, मेरे कोल तां कोई ऐसा जीवन जुगत ही नहीं भी जिहदे राही मैं तेनू पा सकां। कहिंदे मेरा मतलब मैं तां ऐसा वां भी बिल्कुल पापी ते तू भगतां दी रक्षा करन वाला, भगत वचल सुन होत हो निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उरतारू। ये गुण ने ना रब दे कि वह भगत वछल है, भगतां दी रक्षा करदा है। भाई गुरदास जी कहिंदे हे वाहिगुरु मैं ते भगती कीती नहीं, मेरे कोल ते भगती है ही नहीं, भगत वचल सुन, जदों मैं सुनदा भी रब भगतां दी रक्षा करदा है। बाणी विच बेअंत थावां ते कहा हर जुग जुग भगतो पाया, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, कि वाहिगुरु हर जुग विच भगतां दी रक्षा करदा है। हरनाक्ष वर्गे मारे, प्रहलाद वर्गे तार दिते, नामदेव वर्गियां दी रक्षा कीती, पंडतां अहंकारियां नूं पिट कर दित्ती। कहिंदे तू हर युग विच भगतां दी रक्षा करदा, जदों मैं सुनदा हो तू हूं निराश हृदय, मेरे अंदर निराशता आ जांदी है क्योंकि मेरे कोल भगती नहीं, नाम ना भगती कर्म दृढ़ता भगती नहीं है। पर फिर कहिंदे मैनूं रब जी दा उह गुण याद आउंदा, पतत पावन सुन
ਆਸਾ ਉਰਤਾਰ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਨੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸਨਾਨਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਲੇ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਉਜਲ ਕਰਦਾ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਜਤ ਸਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ, ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਨ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰ

मन रे कौन कुमत तै दिनी पद दादा निंदिया रस रचियो राम भगत नह किनी मन रे कौन कुमत तै दिनी पर दादा निंदिया रस रचियो राम भगत नह किनी रहाओ

बालक दस बेनती गावी सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। हफ्तावारी दीवाना दे विच हाजरी भरे गुरु प्यार सत्संग जीओ अमृत वेले तो लैके गुरु दरबार की हाजरी भर के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करे हो सतगुर पाछे कृपा करन सो इनिक सेवा प्रवान करनी आवागले कीर्तन सरण के सत्कारियो भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी उन्होंने पासों अगले कीर्तन सरण प्रिय दसलो फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।